गुर अंग लिखी थे कुमारे गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के नाम विचारे।

हमारी जेबा एक ब्रह्म हर के गुण अगम अथार हम क्यों कर जाए आ हर तुम बड अगम अथार।

वड्डी हूँ बड़ा अबार तेरा मर्दबार वड्डी हूँ बड़ा अबार तेरा मर्दबार निर्मल निर्मल सूजा निर्मल निर्मल सूजा सुचो सुचा सुचो सुचा सुचो सुचा सुचो सुचा अंत न अंता।

आज की तेरी आवाज सुन रही हूं, तेरी आवाज जब करके सारे उन्हें बख्शी, सारे धर्म तुम्हारी भाई बख्शी तुम्हारी रात है, मेरा वाली रात है, और मेरी सास सुन प्यार ना तुम्हारी करो बता इतना राय बुला।

प्रचार कर रहे थे। इंद्रों में तो कालू दिया खड़ाए बुला रहे बड़े सत्कार आ कालू सुना कोई मेरे धन गुणान दिखो कल आवेगा मेरा भाई एडे वे छोड़े देंगे कालू तू अरदास कर मेरी अरदास नहीं सुनता तेरा मालिक क्योंकि मैं पापी किसे सुनी नहीं पुकार किसे गुरमुख नहीं अरदास कालू मेरा जलवा फिर मेरा जीवन सब कालू दिया भी तो पाली हराए भी ठीक है मैं अरदास कर नानक आवेगा बिजली जे मैं अरदास की थी तो आना नानक भी वापस चला जाएगा अब कुछ नहीं मानेगा क्योंकि मैं वो माया का कीड़ा हूं जिसने 20 रुपया बदले गुरु नानक के थोड़े मुकड़े से चंदेड़ा पाया 12 साल के विछोड़े में इकलौते पुत्र में विछोड़े थे आज मैं तेरे कालू को भी नहीं बन जाता पश्चाताप पे आ हर जामन वो हर जिना सरदार मैं लाल के सोने मुकड़े पे चपेड़ा पड़ा अज्ञान कर एक दिन कह दिता नाल जी पिताजी रेगड़े रह के कम नहीं चलेगा कोई काम करो जो आके ले 20 रुपये ले जा कोई सौदा कर कोई बिजनेस कर मैं तेरे नाल का भाई बाले को तोड़े बाले नाल कभी अनजान है तू ख्याल रख अब तभी आने की बुनियादी लिया भी तब बच्ची तो रुक होनी चाहिए चले गए जंगली कटे सर वाला चुट बैठा अरु कह लगे बाले जी महाराज आप बहुत पुरुषा के दर्शन करें रब दे प्यारे के दर्शन कितिया रब चितिया मैं आवे साल चित तेरे भगत मन की कटिए मैल साल करेंगे बाले ने कहा महाराज आप जेड़े काम आए हो करिए सानू की लोड़ है क्योंकि बाले को पता भी है कि सारा रबों का प्यार करना कितने इसी का समाधि लगा के बैठ जाए अलू कह लगे पाले महापुरुषा के दर्शन भागा हद चंगा महाराज आए इन्हों का जरा मत सी बड़ी वधेरी उम्र का चिंता अदुत वर्गा था एडा वा रिटा का उसे जुड़ा किया हो साहबा ने आके आदेश दिता इन्हें पर खुद सत्कार नाल दिखाया दुनिया दाता देने वाला दुनिया का राजक मेरा धन गुरु नानक जी अगर मैं प्यार नाल पूछा महाराज सुनाओ भोजन छके अब कुछ इस तरह मां प्यार जाके पुत्र नु कहती है क्यों पुत्र प्रशादा छक लिया ये तो छक लिया तो मां पहले रह जाए ये नहीं छकिया था तो सच्चा पिता आज कुछ के मंत्री किया महाराज कितने दिनों का पूछ ले हो एक दिन का दो दिन का तीन दिन का इन्हें क्या 5 दिन हो गए हम प्रशाद जी सब का प्याला पी के बैठे खालू कह रहे बाले जी महाराज पिताजी ने की किया सी पिता ने किया सी खरा सौदा करे सच्चा सौदा करे ਜਿਹਦੇ ਚ ਲਾਭ ਹੋਏ ਅਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਸੀਧਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਾਲਿਆ ਮੂੰਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਨ ਜਾਏਗਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੈ
लाभवंत अब करिए सबका तेरी करके। भाई बाजे ने बड़ा समझाया महाराज पिता ने गुस्से में जान दे के नहीं बाजे पिता ने ही किया खड़ा सौदा लाभ वाला ये सब तुम हो जाए चूड़ खाने जाके सीधा के अंदर प्रसाद तैयार किया महापुरुषा ने छकाया तेरे सारे ने छके प्रसाद सुखे में रोटी मिल जाए शांति आए सारे प्रसन्न है तो जरा महापुरुषा का मन सी और अंदर ध्यान होके कटिया तो जो मना उमड़ा छोटी है काम बड़ा वड्डा चीज है किसी प्यार प्रसादा शिकार अपने पता नहीं है कौन है जिस महापुरुष ने उसने अंतर ध्यान होके वेख्या हैरान हो गई ये तो आप रतीत हो गए ये तो आप अकाल पुरुष है निर्गुण को सर्व रूप धार के इसे सानू दर्शन देने वास्ते आया है उठ्या रह नहीं सकिया मेरे ठंड मार दे गए इन्हें सभी जमा एरिया ने किया गुरु जी एक ही सकल निकाल लिया बाल का और मथे पर देख रहे हो पंत ने कहा जी जे आप निकाल लिया बाल का दिता है ये सारे तो वाला सारे तो आज मेरी बड़ी

சாரே மகாபுருஷான சாதானே தனுகுரு நானுக்கு கே நமஸ்காரத்து இந்த சாரையான கே தனுகுரு நானுக்கு बाले ने किया बड़ा समझाया कि नहीं समझे गलती कर बैठे हैं हूं इतने लुप के बहना चाहते सतमुच बाला अपने घर आ गए कालू उड़ीकता पिया नानक सच्चा सौदा करने वास्ते गया होया आया नहीं किसी ने क्यों नहीं था जी भाई बाला आ गया अच्छा फिर नानक क्यों नहीं आया मैं क्या कालू भाई बाले ने घर चला बाले है? जी बैठा है नानक किथे भाई बाला बोले मैं तेरे फिर पूछे नहीं बोले औली जी गया उथे वणा दिया चंगिया लुक के बैठा क्यों क्यों लुकिया है बनाए दसो भी रुपये थानू दिते सन कितने क बना के लिया भी ने तीह के पच्ची बाले ने किया मैं ताजी रुपये की बना के लिया सानू तो मूड़ी गुल हो गई है आखो श्री बने और किस तरह सारी विद्या कर कालू के अंदर गुस्से की ज्वाला बढ़ उठी तेरा लाल हो गया किथे है नानक आज मैं नानक को जीवदा नहीं छ मेरा घर उजाड़ जा रहा है नेता कालू क्रोध पिंडाल माता त्रिपन पता लग रहा आज बड़ा गुस्सा आया है पता नहीं मेरे लाल लाल की करेंगे बुलाया नहीं लाल की ही अम्मी जा तू जाके पिता को समझा दे कोई भी वीर रुपये ही है बेबे तुर पी मां ने सोचा नौजवान जी घरों पर भेज दिता है पिछे नौकर को भेज दिता नहीं रह सकी मां आप भी मगर मगर तुर गई कालू पहुंच अगे हजूर समाधि लगा के बैठे हैं पता नहीं कहे प्रोग्राम पे सोचते जगत जनते ठंड पाने वास्ते पता नहीं दादा कहे विचार जाते पैसे कालू ने हजूर की मां पकड़ के खड़ा कर लिया गुस्से लाल अखा करके गया कितने हर मेरे वीर पी कल दुनिया का दाता हजूर ने एक मेरी अखा खोल के पिता वाल तकिया फिर नजर दिए करते गुस्सा चंडाल ने इस चंडाल गुस्से ने की किया तेरी सास संगत मैं ते कालू का खब्बा हथ फेर ते मेरे धन गुरु नानक की सच्ची सच्ची गल दे उत्ते चपेर सोहना मुखड़ा गुलाब वाला मुखड़ा इतना सोहना मुखड़ा चपेड़ वजी गुलाब दिया पखड़िया कुमलान लग गई नीर पै गए बेबे पहुंच गई बेबे ने सोचा चंगे मौके से पहुंच गई आज मेरे पिताजी ने वीर वास्ते कुछ नहीं किया पर जो तेरे अगे होके तकिया की तकिया नरंकारी वीर ने सोहने मुखड़े से नीर पै गए उपा मार के रो कह लगी पिताजी मेरे वीर नाम है रबी वीर नाम है मेरे की है

कितना प्यार है सहयोगा मुझे भी देखा। आज कल पश्चाताप रोड़ अपनी गलती तस्वर करके रो रहा है। राय जी अज हम हथे जिना अखान हाल नानक को चपेड़ा मारना रहा। मैं तो माया का कीड़ा हां, मेरी अदाल सुन के नहीं आएगा तुम करो। राय जी फिर तुफान चुकी अखा दिया छिपिया प्यार के सुचे मोती गुजर लग गए। फिर कहें कि

बिन घोर अंधा गुरु बिन समझ न आवे गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पार गुर कर शब्द विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सुपन अघन कटे सब तेरे गुर नैन पैन गुर गुर करो गुर नैन पैन गुर गुर करो गुरु सत्य कव नल कह गुरु सत्य कव नल कह जिन गुरु न देखियो ने कियो

बेमुख होवन बेमुखा, मैं जे बेमुख मुख डिठे, बदर पापा बदर पा, मैं जे कर वैरी इठे, कर कर सिठा बेमुखा, आपो बुरे जान कै सिठे, लिख न सकन चित्रगुप्त सत समुंद समावन चिट्ठे, चिट्ठी हूँ तुम्हार लिख लख लख एक दू एक दुतठे, कर कर

हूँ बेमुख मंदा चोर यार जो आ रहो पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अंकार करंदा विश्वास घाती आकृत घन

लो न आवई, जैसो मन लागे पराधीन हीन दीनता में, साध संग सतगुर सेवा ना लगावई। जैसो मन किरत बिरत में मगन होए, साध संग कीर्तन में ना ठहरावई।

रैन सैन समय सब लोग में संजोग पो, चकवी बेयोग सोग पागहीन जानी है। जैसे दिन करके उदोत ज्योत जगमग, उल्लू अंध कंद प्रचीन उन्मानिये, सरवर सरता समुद्र जल पूर्ण है, त्रिखावंत चात्रक रहत बकवानिये, तैसे मिल साध सम सकल

रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन सोपाहीन पागहीन तपहीन बावरी दृष्ट दर्शहीन शब्द श्रुतहीन बुद्ध बलहीन सूते हस्त न पावरी।

अंगहीन सहज स्वभावरी अंग अंगहीन बिना तीन परची ना लग चरण शरण कैसे

धार अणियर कमंद कोरड़ा, तमक धार अणियर कमंद कोरड़ा, पंज शस्त्र परवान, पंज शस्त्र परवान, पंज शस्त्र।

खड़ग तुपत तबर अर तीर शैव सरोही शैथी ये है हमारे तीर। तीर तू ही सैथी तू ही, तीर तू ही सैथी तू ही।

धोती में डली सरोई करे एक ते द्वै करे एक ते द्वै करे एक ते द्वै सुपटा हाथ सोही

स्वरूपी मल मल के लिखे तुम्हें सर के तुम्हें सो महला पहला हरिगुर अपने तिरुहाड़ी सलवार जिन मानस ने देव देखिए कतना

0: तर दिमाग तक पर चक्की चक थल मारोले बहुत अनंत लाटू मात आनी आन का पंखी पौंदियां लैणा सां
1: ਨੱਚ ਨੱਚ ਅਸੇ ਚੱਲੇ ਸਿਰੋਟ ਨਾ ਜਾਈ ਸਦਨ ਹੋਵੇ।

जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्यार फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास है होई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दया वेता सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी गरीब बनवाज दातार जीओ सब थाई होए सहाय दसां पातशाह दे स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब सतगुरु

साहब जी का ध्यान धर के प्यारी सासंगत बोलो सतनाम। अगे मेरे कलगी वाले का दरबार सजिया हो सुरती नाल कर लो दर्शन ते प्यार नाल आखो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब। भाई जोगा सिंह पहुंचिया पर अंदरों सोचता है मना गुरु उतर जामी है पता नहीं की सजा देगा आखो श्री भाई। पर जिस वे भाई जोगा सिंह पहुंचिया हजूर ने दूरों वेखिया ते प्यार नाल मेरे चौजी पातशाह कहते हैं कि जोगा सिंह

आनंदपुर साहब चला गया, किले का दरवाजा खुला सी, अंदर जिसले गया हजूर ने दूरों तकिया, मेरे चौधरी पातशाह कहन लगे, भाई दया सिंह जी गरीब नवाज बाबा कलाधारी जी आए हैं, सत्कार नाल ले आओ। जिसले नेड़े आया, भाई दया सिंह ने सोचिया भी ये बाबा तो नहीं, संगतां विच कई ने वेखे, हजूर कहन लगे बाबा जी नूं भाई दया सिंह जी चंगे आसन ते बिठाओ। बिठा दिता बाबा जी, ज्यों आया भाई दया सिंह, लियाओ फिर 500 रुपया ते घोड़ा। भाई दया सिंह ने कहा महाराज की बेनती सुन लो। हजूर कहन लगे बेनतियां पिछे, पहला बाबा जी नूं विदा करो, लियाओ 500 रुपया। जिसने लियांदा भाई दया सिंह ने कहा महाराज जरूरी एक बेनती है। हजूर कहन लगे बेनतियां पिछे सुना के, पहला बाबा जी नूं विदा करो। घोड़ा भी दे दिता, 500 रुपया भी। जिसने लैके तुरया, भाई दया सिंह ने कहा महाराज एक अत्यंत जरूरी बेनती है। हजूर कहन लगे भाई दया सिंह पहला बाबा जी नूं जान लैन दो। आखो श्री वाहिगुरु। जिस वेले 500 रुपया ते घोड़ा लेके तुरिया, हस के कह लगा गुरु बनिया फिरदा, इनू ए नहीं पता कि मैं बैरूपिया। आखो श्री वाहिगुरु। हजूर कह लगे भाई दया सिंह जी सचे पातशाह फड़ लो महाराज, किनू बैरूपी नु आखो श्री वाहिगुरु। फड़ लिया, फिर 500 रुपया भी खो लिया, घोड़ा भी ते चंगी तरह चाटा छकाया। चाटा जानते हो ना, चाहना समझ लिया जे। सिखा दी मार नु तो दुनिया जानती सी, मार मार के चंगी तरह ये वखियां पन दी। कोई समा पिया ते बाबा कलाधारी जी शिकार खेलन आए, हजूर आप चले गए, बाबा जी शिकार खेलन नहीं आउंदे। तो बाबा कलाधारी जी ब्रह्म ज्ञानी सन, कहन लगे महाराज तुहाडे सिखां दी मार तू डरदे आ, जिस वेले फड़ लैंदे ने फिर हड्डी पसली नहीं तकदे। हजूर कहन लगे बाबा मेरे सिख तुहानू मारने कदे नहीं हो सकदा। बाबा कलाधारी जी कहन लगे महाराज तो ओ भी तो मेरा ही रूप बना के गया सी ना। आखो श्री वाहिगुरु। हजूर कहन लगे बाबे आ जितने तक तेरा रूप बना के गया, सत्कार भी कीता, ओनू 500 रुपया ते घोड़ा भी दिता, पर जिसले ओ अपने मुंह कहन लगा कि मैं बेरूपिया गुरु नानक बनाया फिरदा है, बाबा उस वेले ओ गुरु नानक दी गद्दी वल उंगल पिया करदा सी ते मैं गुरु नानक दी गद्दी दा सेवादार हां, जेड़ा इधर उंगल करेगा उंगल कट देंगा। आखो श्री वाहिगुरु। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। हजूर कहन लगे जोगिया फिर तू कहदा सा गुरु नु पता ही नहीं। तो भाई जोगा सिंह ने कहा महाराज फिर ए भी चंगा हो गया, पता लग गया कि तू अपने सिखां दी सहायता करदा। आखो श्री वाहिगुरु। तो हजूर कहन लगे जोगिया एदा मतलब की होया, भी तू मेरी अजमायश कीती महाराज जिवें समझो। तो पंथ दे वाली चौजी पातशाह दे नेत्रां च जल जाण लग गया, हजूर वैराग चाह गए। कहन लगे जोगिया मैनू अगे भी सिखां ने अजमाया, किस तरह अजमाया, आओ जरा प्यार नाल सुन। हजूर ने मुखातब होके भाई जोगा सिंह नू कहा बहुती लोग

0: ありくじかあるかうまい
1: かちでもふんばんじさちかとるくじるこぎゃにかちでもふんばんじさちかとるくじるこぎゃにतावत भरमत रह नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोबन रूप माया मद माता विचरित विकल बड़ो अभिमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माए हितानी बलवंश छप करत उपावा पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी शील धर्म दया सुच नास्त आयो शरण जी के दानी कारण करण सम्रथ श्रीधर राख ले हो नानक के स्वामी कीरत करण शरण मन मोहन जोहन पाप विदारण को हर तारण तरण सम्रथ सवै विध कुलह समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोयो गत धाओ मूर्त घरी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लाओ हो छो काज अलप सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख पाओ सिख्या संत नाम पद नानक राम रंग आत्म स्यों रहो रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार धरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता पाई अर बंधप बुझन की सब सूझ परी ब्रजमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया कृम सिमर स्वामी एक घरी कर गहले हो कृपाल कृपा निध नानक काट भरम भरी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुघना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत घुगना सुत बनता साजन सुख बंधप तास्यों मो बढ़ो सो घना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अघना मृत मझार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना
2: सत सूरा सील बलवंत सत भाए संगत सगन गुरु मत निर्वैर लीना जिस धीरज धुर धवल दुजा सेत बैकुंठ बीना परसै संत प्यार जे करतारे संजो सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जो नाम नाम नाम रस खान हर भोजन नाम रख सदा चाहे मुख मिष्ट बानी तन सतगुरु सेवियो जिस बसाए गति अगम जानी कुल समूह समुद्र पायो नाम निवास सक्यत जन्म कल उचरै गुर परस्यो अमर प्रकाश बारज कर दाहिने सिद्ध सन मुख मुख जोवै रिद्धि बसै बावां जो तीन लोकांतर मोहै हृदय वसै इक ही ओ सोए रस तिन ही जातो मुखो भगत उचरै अमर गुर इत रंग रातो मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर ध्यायो मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर ध्यायो सोय नाम भगत परस्यो गुरु सतगुरु तिलक सर्व इच्छ तिन पायो चरण तपर्स कियत चरण गुर अमर पवर राय हाथ तपर्स कियत हाथ लगाए गुरु अमर पै जी तपर्स कियत जी गुर अमर बन जाय नैन तपर्स कियत नैन गुर अमर पिख जाय श्रवण तपर्स कियत श्रवण गुरु अमर सुनि जाय सक्यात सो हियो जित हियो वसै गुरु अमरदास निज जगत पित। सक्यात सो सिर जालप बनै जो सिर निवै गुरु अमर नित। सक्यात सो सिर जालप बनै जो सिर निवै गुरु अमर नित।
3: सतनाम कर सास सो दृढ़ नानक संग रियो काते अंगद लैण परिगत तास करने लिमरियो तित कुल गुरी अमरदास आसा निवास तास गुण कमण वखान

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी अर्थवंत आनंद रूप निर्मल विनाशी गुण गावे बेअंग अंत इक तिल नहीं पासी जागो होए कृपाल सो जन प्रभुत्व में मिलासी तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर बियो हर गुरु नानक जिन परसियो से जन्म मरण तो तेरे हो सत सत हर सत सत सते सत पणिया दूसरे आन ना अवर पुरख पौरातन सुनिया अमृत हर को नाम लात मन सब सुख पाए जे रसन चाखियो ते जान त्रिपुतियां काए जे ढाकर सो प्रसन्न पियो सत संगत ते प्यारा हर गुरु नानक जिन परसियो तिन सब कुल कियो उदार सत्य सभा दीवान सत सच्चे पैं धरियो सच्चे तख्त निवास सचित पावस करियो सत श्री जियो संसार आप अभुल नाम भुल्लो रतन नाम आपार कीम ना पवै अमलो जय कृपाल हो गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुरु नानक जिन परसियो ते फिर बौड़ जून ना आए ते बौड़ फिर जून ना आए कवन जोग कौन ज्ञान त्यान कवन विद उस्तित करिया सिद्ध साधक ते तीस को तिरकी मना परिया ब्रह्मादित सनकाद से गुण अंत ना पाए अगो मी जाए पूर सर्व रो समाए जे गाडी सिलग दियार प्रभ से जान लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसियो ते इत उत सदा मुकते प्रभ दातो दातार परियो जातित इत सरना मिले दाम संतरीन जे लग भौज तरना विनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर बाबा दियो दर्श मन जाओ भगत इो मन ठहरा बलियो चिराग अंधियार में बलियो चिराग अंधियार में सब काली उतरी एक नाम धर्म परगत सरलियार पवन में जन नानक गुर पार रामा जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ दनिया सत संतो समाचन अभरा सर परिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सोपावे इहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बनिया है नानक नाम नरिंजन जानियो कीनी भगत प्रेम लिमलाई ताते अंग
ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਪਿਓ ਸਾਇਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀ ਵਿਰਖਾਈ ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾਇ ਏਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋਟੀ ਸਿੱਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ